0: तू लिखता रहे, फटा शायर बनी, तेरे बोला करके हंसी कदी।
1: वाह यार गाना बड़ा वधिया यार, किन्ना तुसी देखो क्रिएटिव किन्ना। थैंक यू भाई जी यार, तुसी बड़ा वधिया गीत सुनाया आज, पहली यारी मैं सुनिया। वाह।
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.

कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनू इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस ते ओ सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टैक्ट अस एट ब्रिज मोहन .com।

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानु जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लब रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छू मंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते।

0: बिल्कुल, मेरे नाल जुड़ गए ने जी हुसनैन जी, साढ़े बहुत अच्छे दोस्त ते विश्व पंजाबी सभा दे नाल बड़े गहरे संबंध ने जिन्हां दे। देखो विश्व पंजाबी सभा ही है जिन्हां ने देखो हुसनैन जी अपना मेल करवा दिता है,
1: जी हमें
0: ते विश्व पंजाबी सभा दा तुसी एक वैसे ओ सुनाउंदे वे हुंदे वी विश्व पंजाबी सभा दा जिहड़ा मेन एक पर्पज ही है ना कि विछड़े दोस्तां दे मेल करवा दिंदी है। मैं अज ही दस रहा सी कि कोई शिकागो तो आ रहा है, कोई सियाटल तो आ रहा है, इंडिया तो कोई आ रहा है, और साडे कैनेडा दे विच कोई ब्रिटिश

देश अपना छड सुधार नहीं वीरा अंबड़ी जाया जाना ही सानू नाल फिराक दे मारना ही। ए बंदियां असी गुलाम तेरे कोई हो

0: 7998877sofastudio.ca. थैंक यू जी।
1: पिछले 25 सालों तो राजनीति की गहरी समझ रखने वाले ते ब्रैम्पटन नू चंगी तरह समझने वाले अमन शर्मा हुन ब्रैम्पटन दे वार्ड 7 ते 8 तो रीजनल काउंसलर दे कैंडिडेट ने।
2: की तुसी चाहते हो एक ऐसा काउंसलर जो तुहाडी गल सुने ते तुहाडे मुद्दे ते डट के काम करे, ता याद रखो अमन शर्मा रीजनल काउंसलर।
1: प्रॉपर्टी टैक्स, ट्रैफिक दे स्पीड बम्प्स, पार्किंग दी प्रॉब्लम, भीड़ भाड़ वाली सड़कां, बाइक लेन्स, नॉइस पोल्यूशन, स्ट्रीट लाइट्स, डेवलपमेंट, सेफ्टी, सिक्योरिटी ते
3: प्रोग्राम सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478355 5294 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

0: स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca।

खूबसूरत सुबह का आगाज़, खूबसूरत लोग, खूबसूरत मुल्क सी या चलो डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी राही टोरंटो पेंसिलवेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक जिसे सुन रहे हो उत्थे आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओंटारियो के सानू बॉर्डर टू बॉर्डर रेंज यानी कि सारनिया के बॉर्डर तो लैके नैगरा फॉल के बॉर्डर तक, नैगरा फॉल तो लैके बैरी, बैरी तो लैके सानू मस्कोका काउंटी तक जिथे ग्रैवनहस्ट तो लैके ओरेलिए तक सुनते हो 411 हाईवे के उपर। उ नॉर्थ ईस्ट के सानू लिंडजी पीटरब्रो होंगे हुए तुम साउथ के बेलवेल तक सुनते हो, इंटायर जी टी ए लंडन किचनर वॉटलो कैम्ब्रिज होंगे हुए तुम सानू सारनिया तक और चैटन तक सुन रहे हो। तकरीबन 1000 किलोमीटर के रेडियस में ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ अमेरिका और कैनेडा के सुनते हो इस लार्जेस्ट रेंज कवरेज फ्रीकुएंसी के नाल डिजिटल फ्रीकुएंसी M530 जिथे मैं थोड़े लिए एक टैकेट तो भी वादा समा हो चुका हैगा जिथे इस दूर दर जिहड़ा हैगा तक सुन वाले साढ़े इस चैनल नूं तुसीं सुणदे हो उहदे उपर शो प्रजेंट करदे हां। आप सब दा हार्दिक स्वागत करदे हां एक बार फिर तो। आप सब दा जो कॉल दा इंतजार रहेगा कि भूखे को रोटी का, बेकार को रोजी का इंतज़ार है, जिंदगी की रेल में हर कोई सवार है, अपनी अपनी मंजिलों का सबको इंतज़ार है। चल पियो सफर दे वल और अपने घर तो कम, कम तो घर तक दे शो दे विच मैं इस पीरसन एयरपोर्ट दे ट्रैक 6 तो जिथे फेडेक्स अपनी उड़ान भर चुका है उत्थे इंटरनेशनल जिहड़ियां फ्लाइट्स ने वह भी इस समय एग्जिट कर चुकिया ने एयरपोर्ट नूं, यानी कि हवा दे विच जो उन्हां दा काम आ उड़ना जिन्हों पर रिस्क कहने कि बहुत रिस्की होंगे वो रिस्क लेंदिया ने उड़दिया ने एयरपोर्ट पर खड़े रह के उन्हों की इज्जत नहीं बनती, हवावान चीरन ना, रिस्क लैन ही जिंदगी बनती है इन्हें। तो आप भी इस तरह है कि एक जगह पर खड़ के खड़ो तरह की है कि जिंदगी बहुत समय कट जानी चाहिए है, ठीक है अप एंड डाउनस आने तो मेरे भी आते हैं आपते भी आने चलते रहेंगे ने, इंसान भी चलता रहता।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: रियल एस्टेट दी दुनिया बिचाओ अपने सुपने अनु सच कर वखाओ फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नाल हाथ मिलाओ
2: रियल एस्टेट दियां बारीकियां सीखो ते कंपनी वालों क्लाइंट्स लीड्स भी पाओ
1: फेयर डील रियलिटी इंक ब्रोकरेज नवे एजेंट हायर कर रहे ने
2: आज ही कॉल करो फेयर डील दे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड हरदीप पंदेर नू
1: 905-671-2000
2: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ अपने सुपने अनु सच कर विखाओ
3: ड्राइव कर रहे हो शो नो एंजॉय कर रहे हो कुछ भूल रहे हो
4: ड्राइविंग लाइसेंस
3: नो
4: पुलिस ऑफिसर
3: नो नो
4: ट्रैफिक लाइट्स
3: नो
4: देन
5: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज नाल काम कर रहे पवन कौर गिल 10 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साल दी इंश्योरेंस कट सकदी है ऑटो होम और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दी 647-325-9900 6473259100 Pavan Kaur Gill from Diamond Insurance.
6: My favorite, meri pehli pasand.
7: I love it.
8: Main ta sveere sune bina reh hi nahi sakdi.
9: Hum sabki pasand.
10: Radio Awaaz.
11: Every morning from Monday to Friday, 9 to 10 and Saturday, 10 to 1 on AM 530. Non-stop calls, non-stop talks. Promote your business with us. Contact 416-518-3200.

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647702B23
1: लाइसेंस नंबर 10394।
2: भाई ये ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज्ड ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानूं यूज्ड ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल बिल सेखू 416-819-6000।
5: ब्रैम्पटन वासियों, रीजनल काउंसलर ले वार्ड 2 अते वार्ड 6 तो प्रेमपाल गिल चौन मैदान विच हन।
6: प्रेमपाल गिल दे कैंपेन ते मुख्य मुद्दयां विच पब्लिक सेफ्टी, सिक्योरिटी, अफोर्डेबिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल जॉब्स अते बिजनेस ग्रोथ, लोअर प्रॉपर्टी टैक्स, सिटी हॉल विच ट्रांसपेरेंसी, ट्रैफिक, ट्रांजिट, पॉसिबल स्पेंडिंग अते पावर दा मिसयूज रोकना शामिल है।
5: वोटिंग डेट 26 अक्टूबर 2026। एडवांस वोटिंग दिया तरीका नोट कर लो, 9, 10, 11, 16 अते 17 अक्टूबर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट प्रेमगिल.ca।
6: पेड फॉर बाय प्रेमपाल गिल।

0: until now, since since 8 years, they increased the property taxes 30%. Why? Why they increased that 30%? Where is the money going?
1: Mm-hmm.
0: So why the all councils are unanimously signed the bills? Why they are not raising their voice? I want to ask whoever stood already 4 years, I think 8 years council. I want to ask direct question to that council. I think Dylan. So why he did unanimously sign for the bill? What he did for the society? What he did for the public property tax justification?
1: नहीं पर लास्ट जो अभी लास्ट लास्ट ईयर ये वाली इस वाले की बात कर रहे हैं कि उससे पहले क्या
0: उसके पहले जी मैंने बोल रही हूँ तो अगेन ही इज कमिंग बैक एंड आस्किंग फॉर वोटर
1: वो तो मेरी बात सुने आप वो आप उनसे बात करके आप पूछ सकते हैं यहाँ पर आप अपने बारे में बताएं What will you do और आपकी कंपेनिंग कैसे चल रही है और काउंसिल में
0: जी
1: काउंसिल में आप जैसे जेंडर इक्वलिटी की कैसे बात करेंगे मैन वीमेन की बात कुछ करेंगे उस वहां पे वीमेन एम्पावरमेंट की बात कुछ करेंगे इस संबंध में आपके पास कोई आइडिया है
0: अगर आइडिया तो है आई इलेक्टेड मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट राइट So what I would suggest, I can recommend my council, our hardworking, community hardworking money has to be fair.
1: Hello? हाँ जी नहीं जैसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे काउंसलर इलेक्ट होते हैं चाहे सिटी या अपने रीजनल काउंसलर इसमें आप चाहते हैं कि विमेन है जो उनके लिए भी सीट्स होनी चाहिए भी हाँ कोई एक या दो या तीन कोई परसेंटेज हो कि उस पे विमेन ही उनकी सिलेक्शन हो एज ए काउंसलर वही जाएं
0: पीपल हैज टू डिसाइड यू नो एक मदर मदर घर को संभालते ना तो वाई नॉट इन पॉलिटिक्स
1: ठीक है
0: तो एवरी वन हैड मदर राइट तो मदर को ट्रस्ट करते ना इलेक्शन में तो ऐसी सोचना पड़ेगी वुमेन को वी हैव टू गिव द चांस फॉर द वुमेन वुमेन हैज टू कम आउट शी हैज टू रेज द वॉइस टुवर्ड्स द कम्युनिटी
1: ठीक है गुड तो अच्छा अब आपको वॉलंटियर वर्क के लिए चाहिए आपके साथी कोई आपकी फ्रेंड्स या और लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आपको वॉलंटियर्स चाहिए तो अगर चाहिए तो आप कह सकते हैं मैसेज दे सकते हैं लोगों को
0: And you know different types they can do social media they can say mouth to mouth and physically they can come for door knocking I'm asking for everyone help who can work for me so that will be grateful to me and advance voting also coming soon so today is 7th so I request the people please come out and vote for new candidate choose best candidate for the society who will work for a basic in ground level so cash is for you know society and the people they have to vote and they have to choose new place if they elect the same people they have to suffer again 4 years so people has to come out and show the change first of all If they, yeah, so I request everyone come out and vote. If you don't vote, you don't have right to ask the people justification for the leader. Please vote and ask.
1: हाँ जी मधु जी मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि जैसे आपने अपने जो आपकी प्रॉब्लम्स आप कह रहे हैं मैं सुलझाऊंगी इनको इसमें एक मेन ये है कि

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: जब HK Movers का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। HK Movers, होम, ऑफिस, अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी आल्सो शिप कार्स, वी आल्सो डू स्टोरेज। 30 इयर्स एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। HK Movers, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
2: हासल फ्री मूविंग के लिए HK Mover।
3: Listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.
4: Toronto's number one station, AM 530.
5: Punjabi Versa!

भाई वाह भाई वाह। शनिवार नू नाइट हो रही है 17 अक्टूबर शाम नू 7:30 बजे मैरियट होटल 410 एंड स्टील दे कॉर्नर दे कॉस्को वाला प्लाजा दे नाल जेड़ा होटल है ओदे विच हो रही है।

0: तीन कैंडीडेट होर आ जिन्हों की अज रिकॉर्डिंग एड साडे को पंजाबी विरसा रेडियो पहुंच जाएगी। कल तो उन्होंने एडवरटाइजमेंट भी स्टार्ट की जाएगी। पेड एडवरटाइजमेंट होंगे सारिया जिहड़ियां साडियां कैंडीडेट की एडवरटाइजमेंट चलदी होंगे। और पटा साहब होर की कहना चाहोगे सर?
1: सर थोड़ा जिहा मैं जिहड़ा टर्मिनेशन सारे गल करनी चाहुंदा, क्योंकि आम जिन्ने भी साडे कई बार साडे जिहड़े पुराने बंदे उन्हां दे दिमाग च हुंदा जिहने टर्मिनेशन वेस्ट ऑफ मनी हैगी आ। पर मैं ये गल करनी चाहुंदा, जिदा कोई बंदा नवां

सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए एनब्रिज गैस.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।

0: ਕਿਹੜੇ ਜੰਕਸ਼ਨ ਤੇ?
1: ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ।
2: ਰਾਤ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਾਰੇ,
1: ਬਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ, ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਆਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਸਵਾਦਲਾ ਖਾਓ ਤੇ 100% ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬਿਗ ਔਰ ਸਮਾਲ ਵਿਦ ਲਾਈਵ ਫੂਡ ਟਰੱਕ 11 AM to 6 PM, ਆਲ ਡਰਿੰਕਸ 50% ਆਫ। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-429-4040, 647-429-4040। ਇੱਕਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नु मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो करदी है ते कवरेज इंक्रीज करदी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: आज खुश तो बात होगी
4: ओ ता होना ही है जदों ढिल्लों वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग आला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी IPTV बॉक्स होवे तैं नक्ता बनदा ही है।
3: आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करन नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला IPTV बॉक्स है। ते नाले टिल्लो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री। होर दस क्या चाहिदा है?
5: क्या कह रहे हैं यहाँ पर?
4: ओ पाजी, सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस।
6: डाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
4: पर टिल्लो वीडियो ते जदो मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा tillovideo.com। होर कोई सेवा?
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: मौसम मौसम मौसम लवली मौसम, क्या बात है, बड़ा ब्यूटीफुल। यू नो शाम हो गया तो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो ऑन कर चुके हो। सब तो पहला मैं दस दया देश परदेश की स्टूडियो से घड़ी दे शाम के 3:07 से 31 सैकेंड होए ने। तेजिंदर सिंह सिद्धू सदमा वाले वालों सारे ही स्रोतियों प्यार मुहब्बत न सत श्री अकाल जी आनो जी सबनों। जी हाँ, बहुत सारा ढेर सारा सत्कार अज के प्रोग्राम के हूँ तो लैके ठीक शाम के 6 बजे तक अपनी मुलाकात है। 1 घंटा असी लगावे तो फिर अगे जाके बहुत कुछ होएगा, खबर भी होनगियाँ कैनेडा दया जी बहुत चर्चा होएगी। तो मेरे वालों सब जी हाँ
1: जी नाल साथ दे रही है मैं मनप्रीत कौर तूर, मेरे वालों भी बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल ते बहुत बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है तुसी सारे मौसम नू पूरा इंजॉय कर रहे हो ते साडे नाल तुसी जुड़ चुके हो पूरे 3 घंटे दे लई। ते स्टूडियो दा नंबर इक्को इक हुंदा है, साडे नाल तुसी गलबात करदे हो हर रोज 905-564-6444 905-564-6444 दे उपर तुहाडी साडी गलबात हुंदी है। हर रोज 3 घंटे दा टाइम हुंदा है ते उम्मीद है कि तुसी अज भी प्रोग्राम दे नाल जुड़ चुके हो।
0: अच्छा मनप्रीत, 7 तरीक हो गई अज अक्टूबर महीने की।
1: हाँ जी,
0: पर मौसम पहला मेरा फिक्र ही वही लवली लवली मौसम। एक शिव कुमार साहब का बड़ा प्यारा गीत है।
1: हाँ जी,
0: अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा है ना, धुप खिली हुई है पूरी प्यार मुहब्बत वाली है ना, ते बाहर बहुत वधिया मौसम आ, सारियां नूं इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि जिन्ना भी आपां नूं हुंदा विंटर तो पहला पहला जिन्ना भी आपां नूं बोनस दे विच मिल जाए ना,
1: ये
0: उह दिन अपने वास्ते वधिया ही ने।
1: बिल्कुल,
0: धुप देखण नूं मिलदी क्योंकि आपां लोग तो फिर भी इस काम कार ते जुड़े रहिंदे हैं ना, जिहड़े लोग जिहड़े धुप दे शौकीन ने गोरे लोग तो स्नो पैंदी अपने चिट्टी चादर जी बैठदी है ना, ते फिर उह भजदे आ अपने आईलैंड वल नूं।
1: हां जी,
0: ते आपां तां फिर भी कई वार कम करदे लगे रहिंदे आ, पर उहनां दा पक्का ही हुंदा वी जाणा ही जाणा।
1: बिल्कुल, हां जी,
0: जदों विंटर दे विच 1-2 महीने पासे लाए होणे आ जद तई फिर इधर खुल जांदा मौसम।
1: हां जी,
0: पर अपने भी हुण बजुर्ग एवें करदे आ ना, भई जदों विंटर विंटर
1: इंडिया चले जांदे आ
0: पंजाब लाए आउंदे आ, नाले पंजाब च मेले गेले हो जांदे आ, नाले पौण पाणी चेंज हो जांदा,
1: नाले व्याह शादी देखी जांदी,
0: शादी देख लैंदे आ,
1: सीजन हुंदा
0: पूरे चार्ज हो गए आउंदे उत्थों।
1: हां जी,
0: गर्मियां दे विच
1: बिल्कुल
0: तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ
1: ਜੀ।
0: ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ
1: ਜੀ।
0: ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ
1: ਜੀ।
0: ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ
1: ਹੈ ਨਾ।
0: ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।

0: इंडिया सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तो तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा
1: 416-504-4444
2: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो।